0: किया। और आपको ये भी मकाम हासिल है कि तारीख इस्लाम में सबसे पहले आपने बैतुल माल कायम किया। और फिर आपकी अजमत व शान का अंदाज़ा लगा लें कि उम्मत में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने का शर्फ जिस शख्सियत को हासिल होगा वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु तआला अन्हु है। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि एक दिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर खिदमत हुए। अन आयशा अन अबा बकर वदखल अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल अंत अतीकुल्लाह मिनन नार फयौम इज़िन सुम्मिया अतीका। जब अका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में खिदमत में हाजिर होने का शर्फ हासिल हुआ, अका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया फ़क़ाला अंत अतीकुल्लाहि मिनन नार, दोज़ख की आग से अल्लाह ताला के आज़ाद करदा हो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हमेशा के लिए दोज़ख की आग से आज़ाद कर दिया है। वकाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इनाम और इकराम या अजमत व शान बयान फरमाई। हजरत आयशा फरमाते हैं फयौम इज़िन सुम्मिया अतीका, उसी दिन से फरमाया उनका एक नाम अतीक पड़ गया। अतीक का माना है आज़ाद होना। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हो का एक नाम अतीक भी मशहूर है। और इस नाम की वजह से इस हदीस पाक में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ुबान नबूवत से बयान हो रही है कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उन्हें अतीकुल्लाह मिनन नार फरमाया। दुनिया की ज़िंदगी में ये शर्फ हासिल हो गया कि अका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको जहन्नम की आग से आज़ादी का परवाना अता फरमा दिया। इस वाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में गुफ्तगू होगी। अभी ब्रेक का वक्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। कंटिन्यू लिसनिंग टू इंस्पायर एफएम। इंस्पायर एफएम। इंस्पायर 105.1 एफएम।
2: आजकल आपके दरवाजे पर मुख्तलिफ चीज़ें फरोख्त करने के बहाने और मुख्तलिफ कंपनियों का नाम इस्तेमाल करके चोर आपके घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, इसलिए होशियार रहें और दरवाज़ा खोलने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि दस्तक देने वाले से आप और आपका घर महफूज है। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
3: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Sleep well, eat right, move and cheer. Brain in top form, focus clear. Hydrate, breathe and take a break. Stronger mind, no mental ache. Thank you for listening to Inspire FM Jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
7: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
8: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
9: Join us every Thursday at 6 p.m. for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
10: Suleiman Rafiq,
11: Leo Nizal,
12: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
11: Tune in on 105.1 FM.
12: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
9: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 p.m. only on Spire FM, shaping the healthier community.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.

0: ये ऐसे ही होगा। तो उस दिन के बाद से मैंने अपनी ज़ात में, अपने जहन में, मैंने हर बंदे को, जिस तरह के भी लोग एक्सप्रेस करते हैं अल्फाज में, कोई मोहब्बत एक्सप्रेस करते हैं, कोई एक्शंस में करते हैं, कोई उनका अपना एक तरीक़ेकार है उसमें करते हैं, मैं जितना कर सकता हूँ रेसिप्रोकेशन उतनी कर देता हूँ, जितनी ऑनेस्टली हो सकती है मुझसे या जिस तरह की हो सकती है। बाकी जो मेरी नेचर में नहीं है और जो मेरे, मैं जिससे तंग होता हूँ, इरिटेट होता हूँ, मैं ना उन चीज़ों का जवाब देता हूँ, ना उन चीज़ों की तरफ जाता हूँ, ना कुछ और, तो उससे ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो इस तरह एक तो हम्बलिंग भी है ये चीज़ कि आपने एक चीज़ जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कर लिया, और दूसरा बार बार कि यार मुझ में ऐसा क्या है, या इसमें ऐसा क्या है, या उन में ऐसा क्या है, या मुझ में तो कुछ भी नहीं है, इस डिबेट से आप बाहर निकल जाते हैं। समझ आई?
1: जी सर।
0: हो
1: तो
0: सकता है
1: मैंने पिछली जी
0: ये कर पाएंगे आप? हो सकता है।
1: मैं इसी इसी रिलेटेड बात करना चाह रहा इसी रिलेटेड बात करना चाह रहा था। पिछली दफा आपने जैसे समझाया था कि अगर आप 15 सेकंड वो गैप दे दें, तो मैंने वो ट्राई किया और मैंने महसूस किया कि वो 15 सेकंड मुंह बंद रखने से बहुत सी अलामतों से बंदा बच जाता है। एक तो आपको वो जो फटे फटाफट आपको रिएक्शन देने की पड़ी होती है, आप उससे बच जाते हैं, और आप उससे बच जाते हैं जो कुछ आप नहीं कहना चाहते, और इन द मोमेंट यू से समथिंग एंड देन यू रिग्रेट, उससे बच गया मैं। और इससे मैंने पाया कि मैं, मेरे अंदर सुकून बहुत है। और दूसरी बात मैंने ऑब्जर्व करी आजाद जी, जब पिछली दफा मैंने आपको बताया था कि बेटे के नाखून से, पैर पांव के नाखून से खून बह रहा था, वो 2 दिन बाद रात को 2 बजे बेड से गिर गया। तो हम सुबह 3 बजे इमरजेंसी में बैठे, पहले तो मैंने वही वैसे ही रिएक्ट किया जो मैंने पिछली दफा किया, मैंने अपने आप को पीटा, फिर मैंने क्यों मैं कर रहा हूँ, लेट्स जस्ट स्टॉप, असेस द सिचुएशन, और जब ये ठीक हो जाएगा तब मैं अपने आप से बैठ के बात कर लूंगा अभी मैं क्या कर सकता था।
0: या उस सिचुएशन बीटिंग योरसेल्फ अप वुड हैव बीन द राइट थिंग टू डू, अगर आपने लात मार के उसको गिराया हो, ऐसा तो नहीं किया ना आपने?
1: नहीं।
0: तो जब आपने नहीं गिराया, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, कई चीज़ें जो कि होती हैं, ओकेजनली होती हैं, एक्सीडेंटली होती हैं, इंसिडेंटली हो जाती हैं, उसमें अगर इस तरह का रिएक्शन देंगे तो एक तो वो चीज़ हो गई, वो फ़र्ज़ करें आपकी बेगम साहब, एक तो एक बच्चे को कुछ हो गया, तकलीफ होगी, वो उनको स्ट्रेस है, फिर आप जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं उससे और ओवरवेलमिंग काम हो जाता है, ठीक है?
1: Exactly.
0: और वो हेल्प करने के बजाय एक्चुअली कोई आप हेल्प नहीं कर रहे, बल्कि और मुसीबत डाल रहे हैं, अगले बंदे को समझ नहीं आती, फिर वो यू नो पौंतर सा जाता है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: ऐसे होता है।
0: हाँ, तो इससे आपने 2-3 चीजें अपने ऊपर काम भी हो गया। अच्छा, एक और बात मैं आपको मजे की बताऊं, जब आदमी को गुस्सा, कब कोई ऐसी चीज होती है ना, मेरे साथ भी होता है, तो उस वक्त ना हर चीज बुरी लग रही होती है, अगला बंदा अगर आगे से, स्पेशली अगर वो बोला आगे से, फिर तो बहुत सख्त काम हो जाता है, ठीक है, कि यानी गलती नहीं मान रहे और यू नो और बहुत सारे मसाइल होते हैं, और अगर वो देख भी नहीं रहा और ध्यान भी नहीं दे रहा, या उसने उसको जो आपको एडिक्वेट एक्शन रिएक्शन चाहिए जिसके वजह से आप काम डाउन हो जाए, वो कमबख्त सब कुछ करता है सिवाय वो रिएक्शन देने के, ठीक है, वो हर वो गलत काम करता है, आगे से एक्सप्लेनेशन देते हैं, लॉजिक देते हैं, डर जाते हैं, पता नहीं कहाँ पर उल्टा सीधा सब करते हैं, वो एक काम नहीं करते कि चुप रहें और आपकी तरफ कम से कम ध्यान दें कि कोई बात हुई है, और शर्मिंदगी होनी चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन नहीं आएगा। तो जब तक ये नहीं आता ना, आपका जो है ना बॉनेट गर्म होता जाता है आस्ते आस्ते, ठीक है? तो इसका एक और मैंने तरीका ये निकाला, जिससे लोग घबरा भी जाते हैं, डर भी, जैसे ही कोई ऐसी बात हो जो कि बिल्कुल गैसकेट उड़ाने वाली हो ना, रादर देन उस वक्त अपने पे काम करना या सोचना या कुछ और करना, एकदम सिस्टम को शट ऑफ हो जाना चाहिए, और आपको उस जगह को छोड़ देना चाहिए। कमरे में है तो बाहर चले जाएं, बाहर हैं तो घर से बाहर चले जाएं, ठीक है, कुछ भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के, डिसकनेक्ट, डिसएंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वही इन्वायरमेंट वही चीज़ रहेंगे तो, और थोड़ी देर के बाद ना वो जब इम्पल्स आपके काबू में आ जाएगी, तो उसके बाद फिर वापस आके जो भी कुछ, क्योंकि बाद में सॉरी करना और यू नो इरिटेट होना, गला ख़राब करना, ये सब, गला भी ख़राब हो गया, आप इरिटेट भी हुए, आपने जो काम पहले किया था उस पर भी सारी मट्टी फिर गई, फिर आप सॉरी भी करेंगे या कुछ भी होगा या नहीं करेंगे या शर्मिंदा शर्मिंदा से रहेंगे, इन सारी एनर्जी को बचाने के लिए एक ही बात है, डिसएंगेज कर लें, और थोड़ी देर बाद वो बेटर सेंस खुद ब खुद जो है ना वो प्रिवेल कर जाएगी, क्योंकि नॉर्मली तो आप ऐसे नहीं हैं, तो वो जब चीज़ ने रिएक्ट किया तो वहाँ आपने कुछ करना है। ये मुझको समझ, ये मैं अपनी एलर्जीज़ के साथ भी ऐसे ही करता हूँ, जो मुझे होती हैं, जिन जिन चीज़ों में फ़ौरन, जो भी मुझे अब तरीका आ गया इतने सालों में, 20 साल में 30 साल तक एलर्जी से डील करने के बाद, अगर मैं अपनी एलर्जीज़ और हर चीज़ समझ गया।

आजकल लोग सड़कों पर चलते फिरते चोरी के मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें फरोख्त करते हैं। चोरी की चीज़ें खरीदने का मतलब आप इस चोरी में शामिल हैं। इसलिए चलते फिरते लोगों से चीज़ें हरगिज ना खरीदें, बल्कि ऐसे अफराद के बारे में पुलिस को आगाह करें। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: Did you know that all of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam's children died before him except for his daughter Fatima radiallahu anha?
2: Listen, just listen for a moment.

बातें थी रहमान के बारे में, क्या तीन बातें थी मुझे दोबारा याद कराइए। शिद्दत, फौरी, आर्जी। ओके, रहीम के बारे में दो बातें याद रखनी है, रहमान के बारे में तीन, रहीम के बारे में दो। ओके, वो क्या है? पहली बात कि ये हमेशा रहने वाली सिफत होती है, कोई हमेशा रहने वाली खसूसियत। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप कहें ये बहुत बहुत इल्म वाला शख्स है, बहुत इल्म वाला शख्स है। वो जब सो रहा है ना, वो फिर भी इल्म वाला है, जब वो जागा हुआ है वो फिर भी इल्म वाला है, जब वो खाना खा रहा है वो फिर भी इल्म वाला है, और जब वो अपनी इल्म की बुनियाद पे कुछ सिखा रहा है फिर भी वो इल्म वाला है। यानी वो सिफत उसके अंदर है, चाहे उसका मुजाहरा हो रहा हो या ना हो रहा हो, वो सिफत है उसके अंदर है, वो हमेशा है। मैं कहूँ ये लड़का लंबा है, वो खुश हो या ना हो, वो गर्म हो या सर्द हो, वो या अंदर हो या बाहर हो, लंबा तो वो लंबा ही रहेगा ना, वो हमेशा के लिए लंबा है। ये परमानेंट उसकी एक क्वालिटी है, उसकी एक खसूसियत है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ फ़ईल, जैसे रहीम, शरीफ, करीम, अजीज़, सब में यही होता है। पहली चीज़ होती है कि ये हमेशा के लिए होने वाली चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है काबिलियत या अहलियत, इसको भी समझने में क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें आप कहें अपने, आप जैसे लेडीज़ को कहें मेरे शौहर जो हैं वो बहुत सब्र वाले आदमी हैं, बहुत साबिर इंसान है। अभी आप पता नहीं, हो सकता है वो भी घर पे है, हो सकता है किसी से उनकी बात हो रही है, इस वक्त वो बिल्कुल सब्र का मुजाहरा नहीं कर रहे, मुमकिन है कि नहीं? या हो सकता है अभी वो सो रहे हैं, अगर वो सो रहे हैं तो वो सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं? नहीं, अभी तो वो सब्र का मुजाहरा नहीं कर रहे, लेकिन उनके अंदर उसकी काबिलियत है कि नहीं, उसका पोटेंशियल उनके अंदर है कि नहीं? यानी फईल, करीम, अजीज, रहीम, इस तरह के अल्फाज होते हैं कि सलाहियत तो है, लेकिन इसका मायना ये नहीं कि उस सलाहियत का फौरी तौर पर मुजाहरा भी हो रहा है। वो इस तरह समझने कि वो अंदर है लेकिन ये नहीं मालूम कि बाहर आ रही है कि नहीं। जिस तरह समझ लें कि गाड़ी है, उसका बहुत बहुत ही ताकतवर इंजन है, लेकिन जब वो इंजन इस्तेमाल ना भी हो रहा हो, सलाहियत तो फिर भी है ना उसके अंदर, ये है रहीम। तो तीन मायने निकले रहमान के और दो मायने निकले रहीम के। अब ये समझ ले, अगर सिर्फ अर रहमान कहा होता तो क्या मसला हो जाता? आरजी होती, बात हमेशा के लिए ना होती। अच्छा, अगर सिर्फ अर रहीम कहा होता, एक तो शिद्दत ना होती, और एक फौरी तौर पर ना होती, और एक इम्कान तो होता कि सलाहियत तो है रहम की, लेकिन उसका मुजाहरा हो रहा है या नहीं हो रहा, वो तो रहमान के अंदर है ना। दोनों की जरूरत थी। अब शिद्दत भी आ गई, फौरी तौर पे भी हो गई, और हमेशा के लिए भी हो गई। अर रहमान अर रहीम, एक और तरह से समझ लें, फर्ज करें कि आपको बड़ी ज़बरदस्त भूख लगी है, आप घर पे पहुंचे, खाना तैयार है, वाइफ ने आपके लिए बहुत अच्छा आपका फेवरेट खाना बनाया हुआ है, स्मेल भी आपको आ रही है, खुशबू आ रही है, लेकिन प्लेट खाली है टेबल के सामने, भूख, आप भूखे मर रहे हैं, और वो आराम से आके आपके सामने बैठती हैं आपकी वाइफ, और कहती हैं अगले हफ्ते क्या खाएंगे? अगर वो ऐसा जालमाना सवाल पूछती हैं, उस वक्त आपके जहन में अगला मिनट समझ नहीं आ रहा, अगले हफ्ते की क्या बात कर रही हो बेगम, अभी मुझे बस खाना खाना है। जब इंसान को भूख लगी होती है ना, तो उसको कब की फिक्र होती है, बात की कि अभी की? अभी की फिक्र। आपकी जॉब है, यहां पर मंथली पेचक होता है या बाई वीकली होता है, क्या होता है? चलो, पहली को पे मिलनी है या 30 तारीख को पे मिलनी है, ठीक है। फर्ज करें आपका बॉस जो है उसने आपको चेक देना है,
5 बजे आपको ऑफिस से जा

0: मैं 4:50 हो गए हैं, वो ट्रैफिक में फंसा हुआ है, फ़ोन उठा नहीं रहा, और आपको जाना है, आपको चेक डिपॉजिट करना है, किराया देना है, ये करना है, और आपको लोग तसल्ली दे रहे हैं, नहीं नहीं आप फिक्र ना करें, बॉस साहब बहुत रिलायबल हैं, हमेशा टाइम पर आते हैं, आप फिक्र ही ना करें, आप बेफिक्र हो जाए, वो हमेशा ऐसे होते हैं, वो कभी भी लेट नहीं होते, आपको तसल्ली हो जाएगी। हाँ ठीक है, हमेशा तो होते हैं, काश के अभी भी हो रहे होते। जब मुसीबत होती है ना, जब मुसीबत होती है, तो आपको हमेशा वाली चीज़ की से तसल्ली नहीं होती, आपको फौरी तौर पर तसल्ली चाहिए होती है। अल्लाह ताला ने अर्रहमान का जिक्र पहले किया, क्यों? क्योंकि अर्रहमान में रहमत कब आती है? फौरी तौर पे, अभी आ रही है। अच्छा, वो मिसाल दी थी आपको खाने वाली, भूखे बैठे थे, अब आपने खा लीजिए बिरयानी, पेट भर गया, फिर आप कहोगे हाँ बेगम वो अगले हफ्ते के बारे में क्या बात कर रही थी आप? अब कैसे दिमाग खुल गया? क्योंकि इंसान की नेचर में क्या है, जब अभी वाला मसला हल हो जाए तो दिमाग कहाँ जाता है? आगे के बारे में, यही होता है ना। अभी का मसला हल, अभी अगर अभी का मसला है तो आगे कुछ समझ नहीं आती, अगर अभी का मसला हल हो गया, एक दफ़ा इधर की तसल्ली हो गई, तो फिर आगे की। इसीलिए जो लोग फाइनेंशियली मुश्किल में होते हैं वो आगे की नहीं सोच सकते, और जो लोग फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हैं वो थेरेपिस्ट के पास बहुत जाते हैं, क्योंकि उनको एंग्जाइटी होती है किस चीज़ की? फ्यूचर की, बच्चों का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, इसका क्या होगा, अभी की तो कोई फिक्र है नहीं, खाना है, छत है, सब कुछ है, तो अब यहाँ का तो मसला हल हो गया, आप आगे की सोचो। अल्लाह ताला ने क्या किया? अभी का मसला हल करने के लिए अर्रहमान दे दिया, हमेशा का मसला हल करने के लिए क्या दे दिया? क्या बात है, अर्रहमान अर्रहीम, उसकी तरतीब भी क्या अजीब तरतीब है, उसको आप इधर से उधर करो बात वो नहीं रहेगी, वो अपनी जगह उसका एक एक मकाम है। और फिर इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की अजीब तफसीर है इसका, इन दो अल्फाज की, कहते हैं अर्रहमान दुनिया के लिए और रहीम आखिरत के लिए, कहते हैं अर्रहमान दुनिया में हर एक के लिए और अर्रहीम सिर्फ अहले ईमान के लिए आखिरत में। ये बात भी अब समझ में आ गई, क्यों? अर्रहमान में क्या था, हमेशा के लिए क्या आर्जी? दुनिया भी तो आर्जी है ना, पर इस आर्जी दुनिया में अल्लाह सिर्फ क्या मुसलमान को रिस्क देता है? सबको देता है, सिर्फ कुछ लोगों पर रहम करता है, सब पे करता है, लेकिन आखिरत में जो हमेशा की रहमत है वो किसके लिए है? अहले ईमान के लिए। और आखिरत का लफ्ज ऐसा होना चाहिए जिसमें हमेशगी हो, और वो क्या लफ्ज है? अर्रहीम। अजीब। आप नोटिस करेंगे कुरान में जन्नत से मुतालिक रहीम भी आता है, क्यामत के दिन से मुतालिक अर्रहमान भी आता है। क्यों? क्यामत का दिन हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन क्यामत के दिन एक खास शिद्दत वाली रहमत की जरूरत है। नहीं, ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहू अर्रहमान अर्रहमान। तो जब अल्लाह ताला की बहुत शदीद मोहब्बत होती है ना, तो उस वक्त आपको अर्रहमान का लफ्ज मिलेगा, बहुत शदीद रहमत, आपको तदब्बुर करना पड़ेगा कि यह कौन सी शदीद मोहब्बत है। इसीलिए फिर आपको सूरतुर रहमान समझ में आएगी, और रहमान अल्लमल कुरान, जिसने इतनी शदीद मोहब्बत की, इतना मुकम्मल ख्याल किया कि उसने उस मुकम्मल ख्याल और शदीद मोहब्बत के नाते कुरान सिखाया, इसलिए कुरान सिखाया। हमने क्या बना दिया कुरान को, और कुरान किस लिए सिखाया गया था, किस मोहब्बत से सिखाया गया था, क्या लिहाज करके हमारा सिखाया गया था, हमने क्या बना दिया कुरान को, सुभान अल्लाह। तो ये हो गया थोड़ी सी बात अर्रहमान अर्रहीम के बाद।
1: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना YouTube चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान।
0: दो लफ्ज जो हैं वो एक दूसरे से बहुत करीब हैं, एक रब और एक मालिक, और उन दोनों के दरमियान दो अल्फाज हैं,